0: रेडियो एरी एफएम 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाट
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो एरी एफएम 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेन्द्र नगर सुर्खेत बाट
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Fragrance。
1: प्रत्येक वेस्पा वा अप्रिलिया को खरीद मा स्क्रैच मार्फत रु 1,00,000 सम्म को क्याश र ऑनर को X5 प्लेन स्मार्ट वॉच पक्का उपहार नागरिकता को भर मा फाइनेंस र एक्सचेंज सहित को 0% सर्विस चार्ज आज आउनुहोस् श्रीनाथ सप्लायर्स मा लोकेशन जुमला रोड स्वा होटल को छेव मा सुर्खेत संपर्क 9801328807 9801328807 दशैं को दक्षिणा तपाई को नजिकै को शोरूम मा
2: Radio Bhedi FM Radio Bhedi FM
3: Radio Bhedi FM 98.6 Vexi 2.7 MHz

0: जनता केबल पांच दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज।